0: करो। जग्गी ढिल्लों दा फोन नंबर है 403-616-2445 403-616-2445।
1: ओहो, आज फेर नी लोड मिलिया।
2: की होया?
1: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नी आई टाइम पे, ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नू फेर नी मिल होना दो दिन।
2: ओहो, रह गए ना फेर पिछे। मैं सुनिया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नू फोन करो ते जल्दी जल्दी गल करके कोई हल लब्बो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
3: हेलो गोपी, शुक्र है तू फोन चुक लिया। जिद्दण दा नवा घर लिया, सज्जन मित्र फोन चुकनो भी गए।
4: ओ सारे डरदे नहीं चकदे, उनां नूं लगदा तू मूविंग ली कहूंगा, कौन इन्ने भरे समान नूं हथ पावे।
3: ओ नहीं भरावा, मैं इंज नहीं करदा। आपां ते हर वार स्टार मूविंग वालियां नूं इक फोन करीदा, ओ बहुत वधिया तरीके नाल सारे घर दा समान सही सलामत बिना किसी झंझट दे मूव कर जांदे आ।
5: अपने घर जां ऑफिस दा समान मूव कराउणा होवे तां स्टार मूविंग दे मलकीत सिंह जी नूं अज ही कॉल करो 4038701790 403-870-1790 स्टार मूवी।
3: इस प्रोग्राम दे स्पॉन्सर हन सोनिक इंश्योरेंस ते मानस पहुजा अल्बर्टा विच ट्रकां दी इंश्योरेंस ते। अगर तुसी बेस्ट रेट लेने ने ते 587-832-1208 ते संपर्क कर लो 5878321208 सोनिक इंश्योरेंस। YYC होम केयर तो वीरपाल कौर होना दी कंपनी जड़ी है जी घर विच बजुर्गों की सांभ संभाल सेवावां दिंदी है। अगर तुहानू घर दे विच बजुर्गों की सेवा लई हैल्प की लोड़ है तो सरकारी खर्चे ते काम YYC होम केयर कंपनी करेगी। वीरपाल कौर होरां दा फोन नंबर 825-760-0983 है 8257600983। ओएसएस समाइल मैडिकल क्लीनिक जो कि सनराइज एरिया दे विच नवे पेशेंट भी ले जा रहे हैं, 6 दिन खुलता हफ्ते के 587-617-4496 इन्हों का फोन नंबर है। किसी अपॉइंटमेंट की लोड़ नहीं है तो इन्हों को एक्सपर्ट डॉक्टर ने। ओएसएस समाइल मैडिकल। मर्सिडीज बेंज कंट्री हेल्थ कैनेडा की सब तो बड़ी डीलरशिप है जिथे गौरव शर्मा होर संपर्क कर सकते हो 403-903-6757 से। वधिया डील आप जी बना के दे सकते हैं जी गौरव शर्मा। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिद्धू ते लवप्रीत सिद्धू जो कि लाइफ इंश्योरेंस सुपरविजर इंश्योरेंस ते मॉर्गेज इंश्योरेंस करते हैं। फोन नंबर है 403-404-3500 पंजाब इंश्योरेंस। मदर इंडिया रेस्टोरेंट जिथे कि देसी घ्यो विच दालां सब्जियां बनाईयां जांदियां ने ते सवेरे ब्रेकफास्ट जो लगता है जी 4 बजे तक चलता है ते 40 तो बाद उस विच आइटमां हुंदियां ने ते बहुत वधिया वैज नॉन वैज इन्हां दा फूड है जी। मदर इंडिया नॉर्थ एंड साउथ इंडियन कुजीन ते प्राइवेट डाइनिंग 40 गेस्ट जिहड़े ने जी इत्थे कर सकते ने। सिटी स्केप लैंडिंग दे विच लोकेटेड है। फोन है 403-936-7777 403-936-7777। इस तों अलावा जी पिक्सल फोटो स्टूडियो नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे विच पिक्सल फोटो स्टूडियो जिथों कि तुसी पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 दे विच बनवा सकते हो। फोन नंबर है 403-947-0060 403-947-0060 पिक्सल फोटो स्टूडियो। इस बच्चों दी फोटो फैमिली पोर्ट्रेट्स ये भी उन्होंने को तुसी लै सकते हो पिक्सल फोटो स्टूडियो तो जी। एक बार फिर स्वागत करते हैं जी रेडियो सुर सुगम 94.7 FM ते 5 बजे तक मेरा ते आप जी का साथ। ब्रेक तो बाद असी खबरां ते जरा ध्यान एक बार फिर केंद्रित करते हैं जी। एक सर्वेखण विच पता लगता है कि 70% कनेडियन ये मानते ने कि उन्हां कोलों उगराहे जा रहे टैक्स जिहड़े ने उन्हां दा लिविंग स्टैंडर्ड रहण दा पद्धर जिहड़ा उस नूं तबाह कर रहे ने। ये रिजल्ट्स एक डिसकनैक्ट है सरकार दीआं खर्चीलियां नीतियां दे विच अते टैक्सपेयर लोगों दी प्रायोरिटी के दरमियान। ये मैसेज कनेडियन ने नवे इप्सोस पोल दे विच दित्ता। ये एक मॉन्ट्रियल इकनोमिक इंस्टीट्यूट MEAI लई उन्हां वल्लों सर्वेखण किया गया जिस विच पता लगता कि 70% कहिंदे ने ਕਿ ਸਾਡੇ